गाई ग्वाला सातमा दिए नाचे मेरा मनमा दही चोरे माखन चोरे चोरे जोड़ी साड़ी धर्मानंत पाप चोरे तारे भवदला पारी नारायण ए लै जाऊ पराम धाम।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Bunnia. Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: नमस्कार रेडियो सैलौं सामुदायिक एफएम बैनी में धुप्लो 7 मेगाहर्ट्ज मदर प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन 2026 अगस्त 15 तारीख श्रावण 30 गते शनिवार तृतीय तिथि अब स्तुति करूं
1: आयु त्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षेण कल्पय भरी